तक तक तक तक तक तक तक तरे हो यति का दिन गयो बसेर के भयो काम गर्ने दिन सबै भाई हिँड हो रा

आज जस्तो छ आज दुःख दिएन महाकवि सिद्धदास महाजु पक्का नसिक पिसना जनायत अगुजी घुमेसिया तस्क हे बालाको मुसुजी वेकजी महाकवि अले वेकया सचिव नि च्याकोगु 158 बुधिया लस्ता सिद्धदास स्मृति समाज वंगु शुक्रबार या इतुम्बाले सिद्धदास महाजु कृपा सोज्या धिने बल्ला वचिना ख बने धिने बल्ला कासा यत सिद्धदास स्मृति समाज या छ्यान्जे दीपक तुरादर अध्यादि कथ यया स्कूले बना चोपी विद्यार्थी ते दथु सिद्धदास महाजु या मसिका न्यबेगु नीति थु कथ ज्याजो जुगु ख बेकुल व्यादिगु जानकारी कथ नीता इले शुक्रबार नीता इले सम्पन्न जुल अले बुझ्याजो स ये महानगरपालिका 22 वडा अध्यक्ष चिनिकाजी महर्जन या त मु पाहाको थौ चाहिँ बुङ्गु खसा र थिथि स्कूल या बोना मिपि अले सेना मिपि न थिङु ख चिना ख दे दे बल्ला कासे निर्णय कथ लोक कविराज भाइ ज कमी व किपा चोज्या कासे निर्णय कथ प्रदीप वज्राचार्य पिन्त लियगु दिसा कासे बुधिका पिन्त नगद शिरपा या व्यवस्था न दु आउ कासा या बारे सुसुत्या त व चाहिँ मेघ वाले छ कछ पिन्त झने जी तेगु जी जाजो सा आ हक्रो जी मेघ छगु बुख स्वातेना थो बुख ख सिद्धि लक्ष्मी महालक्ष्मी नगरपालिका द सिद्धि लक्ष्मी थ्यावल महालक्ष्मी नगरपालिका या गोसाले थो लसा पासा पुच थसी जुगु जुलला थसी त जी चाहिँ सिद्धि लक्ष्मी नगर जोरिया त थो चाहिँ शुक्रबार अनवडा नम्बर 6 देवनरी छौ नेपाल भाषा नियसली स कासा जुल खला आ थो अनवसा थसी रहेको था मला थैब रहेको था तस्तो नेवातेको था नि तर अन विशेषना चाहिँ दगुलेगुले थिरीबले चाहिँ नपायाको जुन पहिलाको थाहा चाहिँ दक्कै तनाउ अरे छ नि अन नुनुगो अन हाउसिङ्स त दिएका चौधो मलाई हाउसिङ्स त्यही बिचे बिचे प्ला प्ला छुटे अरे जिरो ल तस् कहे चेन्ज युङ ल नेक्सा अब बुख पाक्यो भने थो चाहिँ बच्चा नपाए या पनि असार 1 गते जुगु जुल ल असार 1 गते न्यागु थो चाहिँ नेसाली सा कासा बुद्ध मार्ग भजन खल सनाहर्ष दाफा खल अनन्त ईश्वरी सेकेन्डरी अनन्त इंग्लिश सेकेन्डरी स्कूल सिद्धिपुर साइक्लिस्ट पूजा माउन्ट ओली इंग्लिश स्कूल पश्चिमा भजन खल व ललित एकेडेमी बोतीदुगु खासा फाइनल कासा सिद्धिपुर साइक्लिस्ट पूजा नाप सना हर्ष दाफा खल लियु व बुद्ध मार्ग भजन खल लिया लियु लागु जुल अर्थन चाहिँ हाई स्कूल न बोती कागु जुल अलि खल पूजा न यागु जुल अलि साइक्लिस्ट पूजा पाखे न कागजुल ऊ चाहिँ एकदम घ्यामेसान बोधिका जिउको जुल मला प्रकाश महर्जनीय अध्यक्षता नरेन्द्र मानन्दर न्यास न्याना यहाँको ज्याझोले वडा अध्यक्ष धर्म महर्जन मु पाएको थौँ चाया दिलसा पाएको थौँ वडा दुसपी शोभा महर्जन सुरेन्द्र महर्जन सुशान महर्जन र लक्ष्मी खत्री पि थ्याङ्गु जुल कासा नाप लिउ वा लिया लिउ लागु पुचया त मु पाहा पाखे दसी पौ सिल ललहागु खसा दाता धर्मराज उपाध्याय न छसी कथ जिदो खुदो व पेदो तका दाल अति हे नाप लागु पुसाया त लस्ता पुसाया त लस्ता पंगु से रूपरत्न साक्य जु थप दोषी तका दा व्यतिगु ख उगु हे ज्याजोले निला तक न्यागु रञ्जना लिपि सेने ज्याय बुति कया दिपि बनामी पिन्त नेपाल लिपि गुथिया नाय निरञ्जन ताम्राकार जुजमान महर्जन मु पाहा महर्जन वा पाहा पिस दसी पौन ल लागु ख थो बुखए चाहिँ दक्ले नि पुसे चंगु वा दक्ले थोछरा वा दुनि मेल ध्याला बेमेल ध्याला मला थो बालक छिङिना दिल्ला म दिल्ला थुके चाहिँ जुन क्यास प्राइज एर्का धागो चाहिँ हुन भुलि धाबे टोटल नि दो मलाई द फर्स्ट लामिस त छिदो सेकेन्ड लामिस त खुदो अलि थर्ड लामिस त पेदो उके दाता चाहिँ धर्मराज उपाध्याय धा चाहिँ धुला छन न्याचा थो बालागो बुख धामा ल थो नेसलिस कासा चाहिँ जुया चुनमा थुकेना विशेषना चाहिँ नेवा मस्तेगु दुनी नेवा खगो प्रति अले नेवा तजिलजी मखला नेवा नसा तोसा ओके चाहिँ भतिसा इन्ट्रेस्ट अप फो बोलिन्थे दजैता ज्याजोसा हाक्रम मेगो मिस्वा

निपालको काखमा लसको छ ज्याझो नेपाले ज्याझो छिन्दे नाचना दिला खरस मिला प्रविधि दिदी रविन्द्र चौधरी ज्याझो सा आम मेगु बुख पाखे भने वज्राचार्य पूजा विधि अभियान समिति धका थसाई यल इखा छि दुगुजुल थो वज्राचार्य पूजा विधि अभियान समिति पाखे भिंगा आइतबा व मेगा सुम्बा न्युनुयंग बौद्ध सांस्कृतिक तारा पूजा तथा पूजा सामग्री प्रदर्शनी मेलाया गोसा गोगो ज्याझोन कला संपदा संस्कृति सुसंपन्न येल महानगरीय मेगो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा वज्रयान बौद्ध परंपरा ख थो नगरे चुंगु प्राचीन बहा बही अर्थात बिहार बिहार त सदियों निसे निरंतर थो परंपरा त मध्ये जनजीवने यो कुहे महत्व पिया यागु पूजा पाठ विधि पूजा सामग्री परंपरा व जन विश्वास या अभ्यास जीवंत प्रदर्शनी प्रवर्धन एवं महत्व उजागर यागु उद्देश्य तो न्यूनो या ज्याझो यागु विशेषना चाहिँ थुके या आयोजक वज्राचार्य पूजा विधि अभियान समिति थो खाँचाएं यथांगो दो अलग थो चाहिँ विगत नीच ज्यादा निहान से निरंतर रूपा वज्रयान पूजा विधि अध्ययन अध्यापन याना लोप उन्मुख मौलिक वज्रयान पूजा विधि तथा संस्कृति या संरक्षण प्रवर्धन एवं परंपरा निरंतरता या लगी नोगो पुस्ता समेत थो विभिन्न ज्याझो बारी सीमा नगा थो जागो पूजा विधि अध्ययन समिति देखा जाए ज्याझो याना वया चुंगु नवेक खन्यतना दिलसा थुक्सी दासा येल महानगर पालिका 16 वडा कार्यालय या गुहाली थो ज्याझो झुलुझुल ज्याझो अष्टगाधेवले आइतबार असार 7 गते सुधे 10 बजे सुरु जुगुजुल अलगर 16 वडा या वडा अध्यक्ष निर्मल रत्न साक्केजु मु पाहाको थ ज्याझो या उले जया नदीगु खसा अले वखुनु वज्रयान पूजा विधि सामग्री प्रदर्शन प्रज्ञा पारमिता सूत्र पाठ 10 कर्म तथा प्रज्ञा पारमिता विषय प्रवचन तथा बौद्ध परम्परागत चर्य नृत्य ज्ञानमाला भजन एवं वाद्य वादन प्रस्तुति हुनुजुल अथे न्यू नुगु दिन अतगादैगु 8 गते प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक ज्याझो या निरन्तरता जुल अले नापा अन तारा पूजा सप्त विधानेश्वर पूजा तारा पूजा विषयक प्रवचन गुरुजु पिंस पञ्चदान प्रदान व समापन समारोह नजुल थु बोना सुन ब्लेखला आज नेपाली बौद्ध तयको दु मला तर विशेषना बौद्ध परम्परा लेन फरक फरक विविधता दु ऐसा विशेष राज्य वज्राचार्य साक्य पिंसा थोड़ा गो ज्याझो तो यहाँ ना चुनी तो छके बाला गो ज्याझो तो ना खा तर आज तो पूजा बीती ना घेरा ते वो रगाशिये ने मागो अवस्था भी ढूंगला नेपाले तो चाहे तो स्कूल है और सब मागो खड़े दागो मेरे को बेताद होनी सुनी गले सुना है जिसमें पूजा बीती गेनाते हो रखा चाहिए शेना सुना तो ज्याझो याद तो सके है याई गुखा अठन्ना युक्ति ज्याझो जुगलो तो स्पेसिफिक चीज़ तो वज्राचार्य पूजा विधि अभियान समिति युक्त से गलत चुनो मगर ठन्ना में मेरे को आना प्रवचन आना दक्षिण दुगु जुलो मगला तो युक्त है जी अति खाना दुनी पिन पिने ला आतो दे दबु ले वे रुंगा जी वा चागु खा पिन पिने विशेष ना तो सुनी गला पिने से पूजा विधि ते मुसे अभी कप्सन सुरु सुरी अजागो ताली में मांगे था से विधिवत रूप पूजा ते मगला जस्तै जन्मदिन बेले गेना पूजा विधि पूजा ते अलि मेमे गले से गेना पूजा ते घेरा पूजा या छुदियो नापा पूजा या वो अलमल जुल रखा चाहिँ या त तर आ सुनी गले जा अठिया मले मागुला त यो बिचा वइ द चाहिँ ना तर सुनी गले ना खास मा खनि विशेष र आयाको नु पुस्ता अझ धा आ जिसबेन छिगु सन्तान या पुस्ता छि क्या ह्यापी गु पिनिगु पुस्ता वो पुस्ताला थजागु खे खासै उली इन्ट्रेस्टेड तै मखो अले मस्तेगु हान सुपा रस थंगरेला 7 बजे 8 बजे स्कूल जुइ झिमो पालेला 10 बजे स्कूल ख अले सुधे दियो पूजा याना च्यातोना अले जानया मला जावन नया न वनला अनि सा तर आला घेजी रासा दनसात ख्वासिल अले छुये मनसे अझ गुमे मैसा चा ब्रेकफास्ट याना गुमेसा छुये मनसे स्कूल हुने स्कूले दोकन कि व्यवस्था जुइ मला एसा थो क्रम न मस्ते छ जेगु संस्कृति सेकेको अवसर मन त अले शनिबार छनु वई

अग्नलस कुसे ज्याझोस ज्याझो नेपाली छिंगेना सुना दिला अले जिगुना खरस मिला आज ज्याझोस सबु मेगु बुख तेतेना तोस येला या बुख ख येला अध्ययन केन्द्र या नेपाल भाषा पाठ वाचन ज्याझो निकोगु नेपाल भाषा पाठ वाचन धगा तगु लेनाप अष्टमाया बाबुकाजी शिरपा ललहाना ज्याझो न संयुक्त रूप जुगु खनि थो चाहिँ येला अध्ययन केन्द्र या गोसाले जुगु जुलला एल अध्ययन केन्द्र गुसा व अष्टमाया फाउन्डेसन या गुहाली नेपाल भाषा पाठ वाचन ज्याझो 1146 जुगुदु ज्याझोले यलय सामुदायिक व संस्थागत बनेकुथी बनाचोपी मस्तेस जिगु बनेकुथी शीर्षके नेवा भाषा पाठ वाचन यागु ख यल महानगरपालिका थनया सामुदायिक बनेकुथी ईसीडी तगी निसे न्यागु तगी तक्क नेपाल भाषा बङ्का वयाचुङ्गुदु येल महानगर थनया सामुदायिक बनेकुथी अनिवार्य रूप नेपाल भाषा लागू यान तगु दिशा संस्थागत बनेकुथी ऐच्छिक कथ तया तगुदु अर्थात सरकारी स्कुले अनिवार्य जुल तर प्राइभेट स्कुले चाहिँ ऐच्छिक कथ तय तगु जुल येल महानगरे हुन पाँच कक्षा तक येल महानगर दुने नेपाल भाषा बोङका वया छुङ्गु बनेकुथिया बनामी ते दथुई नेपाल भाषा पाठ वाचन धेधे बल्ला जुगु ख धेरै बल्ला खे सामुदायिक बनेकुथिया स्वीखुम व संस्थागत बनेकुथिया झिन छमयाना पी हेमेसिन बोथिकागु ख बोथिकापी बोमिते दथुई मंगलबा यलया आदर्श माबी छनोट चरण जुगु ख व्या नापा छनोटे उत्कृष्ट जुपी सामुदायिक बनेकुथिया झिम व संस्थागत बनेकुथिया निमयाना झिन निमेसित फाइनले फाइनल चरणे पाठ रचना याकु ख रचना पाठ्याको गुख फाइनले धेन्दे बल्ला खे थ्योपी मध्ये सामुदायिक बनेकुथिया झिम बोमिपी गैर नेवात लागु ख थुपी झिम सिन तसक निपुक नेपाल भाषा पाठ रचना याना यङको गुख कुकी श्री श्रमिक बाल विज्ञान आधारभूत विद्यालय या आरसी ढुङ्गेल नहप मिननाथ आदर्श शिक्षा सदन आधारभूत बनेकुथिया प्रिज्मा लामा लिउ व चण्डी आदर्श सरल माध्यमिक विद्यालय या वर्षा राई लियालिउ लागु ख छनोट चरणे नेपाल भाषा या समालोचक पूर्ण ताम्राकार सेनामी राम महर्जन व नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान या पुलाम प्राज्ञ अगिव बनेपाली उत्कृष्ट विद्यार्थी पनि लियादिगु खसा शनिबार अशोक हले जुगु फाइनल चरणे पुलाम प्राज्ञ बनेपाली निर्णायक भूमिका मितादिगु ख तेन्दे बल्लाखे त्यापी व सहभागी पिन्त मुपाहा येल महानगरपालिका या मेयर चिरीबाबु महर्जन दसिपो लहानादिगु खसा अष्टमाया फाउन्डेसन या बाबुराजा महर्जन व सरिता महर्जन दास शिर्पा व उपहार लहानादिगु ख अथे उत्कृष्ट जुगो बनेकुथिया नेपाल भाषा शिक्षक शिक्षिका पिन्तन दास शिर्पा ललागु ख अधीन केन्द्र या नाय तुलसीलाल सिंह या सभापति जुगो ज्याझोले नवाना दिसे मुपाहा येल महानगरपालिका या मेयर महर्जन थौ मस्तेस नेवा भाषा नवागु दहेगु बनेकुथी स्थानीय भ्या लागु या नगुया बा लागु लिचो खनेदुगु ख तया दिल वेकल येल महानगरे आन्यागु तगी तक स्थानीय नेवा भ्या लागु या न तयागु जुसा याक नहे च्यागु तगी तक लागु यागु प्रतिबद्धता न फङ्का दिल ज्याझो विशेषमा येल महानगरपालिका या उपप्रमुख मञ्जली साक्य आ सामुदायिक बनेकुथी जक नेवा भ्या अनिवार्य जुया चुमुली याक नहे संस्थागत बनेकुथी न अनिवार्य यानी यङ्केगु प्रतिबद्धता पुङ्का दिल ज्याझोले बनेकुथी या मस्तेस पाठे दुगु मे हुला प्याखन मे बोगु ख विशेषजना स्कुले नेपाल भाषा बुङ्केगु सुरु जुई ढुङ्का युको थजागु ज्याझो त जुया चुङ्गुदु थजागु ज्याझो त जुई नमा गुके याना नेपाल भाषा बुनिपि बोमिपि त हपा न जुई अले आ नक्तिनी त स्वयं बालागु ख गुगु के न येल महानगरपालिका उपमेयर जुन दैदिथे अले वेक्लाउँदै दिगु चाहिँ प्राइभेट स्कुल न नेपाल भाषा अनिवार्य जिगु अलि मेयर जु चाहिँ च्यागु त गीत याक्नु यागु जुन प्रतिबद्धता भएको सङ्गीतरा दिल ओरेगु तस्क हे बाला सुरस्वती मस्ते थाकु पक्का न छाला सार थौ गरे नेपाली बोली थाकु विशेषना प्राइभेट स्कुले पनि पे इङ्ग्लिस मिडियममा पनि पे मस्ते त अलि नेपाल भाषा न बो जिबले तस्क हे थाकु तर विस्तार विस्तार न थोला बुने मागु र गाल कि छेन न वे कथ बुङ्केली कुतै मलाई नेपाली बुङ्के त न प्यारेन्ट्स विषय कुतै आएको थिएँ अन्न कुतै नि छ नेपाल भाषा बुङ्के तर अलि थोसा युज टु ज्या भने अलि छिगो भ्या चाहिँ
एकदम ताई तक सुरक्षित जी संरक्षित जी मला छार सब पहला लास लात किला भैले न सुनी ने भैये मला तो किला वो संस्कृत बैठे जी का मृत बैठे अभी संस्कृत किताब तो दू तर लाइगु वर्ग मोर संस्कृत भाष थ सुइना मा भ म खनि संस्कृत भ चिक पसन सुके म सुख तर नेवा भारी होला आन लगभग 14 लाख नेवा तेगु मा भ ख अले थो मा भ लिंगा तेगु जिम्मेवारी दैगु जी प्रत्येक नेवा तेगु न ख तासे जाजा साख न मेगु मिसवा